जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

ऐसे कौन से गोडा कौन धरे, ऐसे कौन से गोडा कौन धरे। चोरा नाल रलिया कुतियां ने, यारो मैं उस देश का वासी हां।

अगे पूछ हलौंदा ए लख सच्चा होवे बिन पैसे बस उसनू थल्ले लौंदा ए कैड़े ओ भी बसण पदौण सदा इक के ओ भी बसण पदौण सदा जिन रखियां सोचां उच्चियां ने

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरियाइयां नू तू हमेशा याद रखी।

मैं सदा तेरे रादार उड़ा रहा नी, निकल गया रादार उड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रहा नी, निकल गया रादा रोड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

दुख भंजन नू मार लिया उस दिया हिरसाया साने उस दी बांह पहला फड़ ली ते

करके मैनू याद, रोया करेंगी तू, हाय कर करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू

एक वड्डी खबर सामने आ रही है। इस बार इस वकारी पुरस्कार दे लई कुल 287 नाम नामजद जड़े कीते जा चुके हैं, जिन्हां दे विच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, पर स्पष्ट नहीं है। हालांकि नोबल कमेटी वालों अजे तक इसकी अधिकारित पुष्टि नहीं की गई। केड़े देशां ने भेजिया ट्रंप का नाम, असल च उन्होंने जिहड़े होर मुल्क ने उन्होंने नाम भेजने की कोशिश की है, ट्रंप नूं भी भाई दिओ पीस प्राइज। इजराइल है रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इजराइल है जी दसो जी जिन्हें घाणकार मारिया सारे आले दुआले का दुनिया तक ईरान तक जो मार की है। इजराइल पाकिस्तान ते कंबोडिया के नेतावान ने नोबल पुरस्कार जिहड़ा डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश की है। ट्रंप पहला भी जिहड़ा कई मौकों के उ नोबल पुरस्कार न मिलन के उ अपनी नाराजगी जमीन के उ लिटदे भी नजर आए ने बच्चे वांगू। नोबल निजमा के अनुसार नामजदगियां नूं 50 साल तक गुप्त जिहड़ा रखा जाता है, इस दे लई किसी भी नाम की अधिकारित पुष्टि होना मुश्किल है। नॉर्वे की जिहड़ी है नोबल कमेटी के सकत्तर क्रिस्टियन बर्ग हार्प विकेन ने जिहड़ा दस्सिया है कि इस साल की सूची के 208 व्यक्तियां ते जिहड़े ने 79 संस्थावां शामिल ने। उन्हां कहा कि दुनिया भर के वध रहे संघर्षां के दौर के इस पुरस्कार की महत्ता होर भी वध गई है। नोबल कमेटी तो इलावा दुनिया भर के हजारां लोग नामजदगियां जमा करा जिहड़े कर सकते ने। इन्हां दे विच सरकारां ते संसदां दे जिहड़े मैंबर मौजूदा राजमुखी इतिहास समाजिक विज्ञान कानून ते दर्शन दे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ते साबका नोबल शांति पुरस्कार जेतू शामिल ने। होर कौन कौन जिहड़े ने संभावी दावेदार ने ट्रंप तो इलावा होर कई जिहड़े प्रमुख नाम भी चर्चा दे विच ने, जूलिया नवलनाया रूसी विरोधी नेता अलैक्सी नवलनी दी जड़ी पत्नी है, पोप लियो धार्मिक शख्सियत ने, एमरजेंसी रिस्पांस रूम जड़ा सुडान दा एक स्वय सेवी समूह है, लीसा मुरकोवस्की अमेरिकी सांसद ने। 9 अक्तूबर नू होवेगा जेतुआं दा ऐलान हुण ते नोबल शांति पुरस्कार दे जेतुआं दा ऐलान 9 अक्तूबर 2026 नू कीता जाणा है। इस तो बाद 10 दिसंबर नू एक विशेष समारोह दे दौरान यह सम्मान भेंट कीते जाणगे। फिलहाल पूरी दुनिया दीआं नज़रां इस गल दे उत्ते टिकियां होईआं ने कि इस वार डोनाल्ड ट्रंप दा नोबल जित्तण दा जिहड़ा सुपना है सुपना जिहड़ा पूरा होवेगा जां नहीं होवेगा। आखिरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, विज्ञान दे नाल जुड़ी है। 18 करोड़ साल जिहड़ा पुराना समुंदरी जीव मिलिआ जर्मनी दी धरती दे विचों, एक अजिहा दुर्लभ पिंजर मिलिया जिसने पूरी दुनिया के विज्ञानियों नूं हैरान करके रख दिता। खोजकर्तावां ने एक मिट्टी की खदान दे विचों लगभग 18 करोड़ साल पुराना एक विशाल समुद्री जीव का जीवाशम जाने की फॉसिल जड़ा मिलिया जिसनों इच थ्यूसोर दे नाम दे नाल जड़ा जानिया जांदा है। विज्ञानियों के अनुसार यह जीव जुरासिक काल के दौरान जड़ा समुद्र का सब तो फुरतीला ते खतरनाक शिकारी हुंदा सी। देखण दे विच इह वी बिल्कुल अज दी डालफिन डालफिन जिहड़ी है उहदे वर्गा लगदा है, क्योंकि इहनां चों अंतर हुंदा जी इह फेफड़िआं दे राही लैंदीआं ने आपणे हो गए जी वेल हो गई जिद्दां मनुख दे फेफड़े ने ते आम मच्छी दे फेफड़े नहीं हुंदे। डालफिन वर्गा जिहड़ा लगदा ते पर हैरानी दी गल इह वी है कि इह मच्छी जां सतनधारी जीव नहीं सगो इक रेगन वाला जिहड़ा जीव है जाने कि वह घड़ीस घड़ीस के तुरद है। इस खोज की सब तो हैरानीजनक गल इस दे जबाड़े दे उते मिलियां सट्टां ने। जबाड़े दे जोड़ां दे कोल इन्नियां गंभीर सट्टां सन कि अजिही हालत दे विच शिकार करना लगभग असंभव सी, पर विज्ञानियों नूं अजिहे सबूत मिले ने कि यह जीव हर जिहड़ी आ हार मन्नण दी बजाय इन्हां सट्टां दे नाल ही लंबे समय तक जिउंदा रहा, जिसने विज्ञान दीआं पुराणियां धारनावां नूं हिला के रख दिता है। जांच दे दौरान इस दे पेट दे विचों छोटे पत्थर जड़े मिले ने, क्योंकि ये खांदे ने जी जो आप देखते हैं प्री जड़ी है हिस्टरी देखते हैं ना जी इन्हां दी बड़ी दिलचस्पी वाली है ते वो लंबी धोण वाले हुंदे सी डायनासोर जड़े अपने समुंदर च है ते वो जड़े ने खाना पचाउण दे लई अपना जां करन दे लई एक जड़ा स्पैशल जिद्दां कि कुत्ता जड़ा अपने कह लो घा लभ के खांदा ना वो जड़े सी पत्थर लभ लभ के खांदे हुंदे सी ते उहनां दे विचों ने जो इस प्रजाति दे विच बहुत घट देखे जाते ने। माहरां दा मनना है कि जबाड़े की सट के कारण इसने सख्त शिकार की बजाय नरम खाना शुरू कर दिता सी ते उस खाने नूं पचाउण दे लई पत्थर निकले सन ताकि वह पच जाए। मिट्टी दे विच दबे
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਵੇਰੀਆ ਸਟੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸੰਚੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਰ ਦਈਏ ਸਮਾਪਤੀ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਪੌਲ ਸੰਧੂ 253-266-6924, ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ 206-354-4060, ਆਫਿਸ 206-575-6257, 15th ਸਾਊਥ ਗ੍ਰੈਡੀਵੇ ਸੁਈਟ 436, ਰੈਂਟੋਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 98057, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ .com। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਗ 14 ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਜ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੰਚ।

के अड़या लोक मारि दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर हिजर दे सजना, तेरे तीर हिजर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

ताई भैणने आनी बकरी पारोवे, भैणने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं घराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सोहरे घर जातीए कर ली फर्जां दी कमाई। जा सोहरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई, जा सोहरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई पटोले।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास